0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
0: Overseas release by Zee Studios.

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਨਾ ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਸਿੱਧੇ ਆਓ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ 186, 180, 492, 482 ਤੇ 499। ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਕਾਲ 02-9063-1618। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियाँ बने और भी रोशन शान के साथ।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना नांजी नांजी।

0: आंजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गा

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190

0: आगे देश कौन सा है ये भूल गया।
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments।
0: ये border चल रही है।
1: नहीं जी ये तो उड़ता तीर चल रहा है। From October 9th at cinemas near you।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन का जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई और फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। इना ही नहीं स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
2: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: Still bangles.
4: Get in. Said it was here.

0: Star Studio 18 and Panorama Studios production presents.
1: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
2: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
0: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas release by Zee Studios.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो.
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार.
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच.
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे.
5: आहो जी आहो.
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच.
6: Hi, hello, this is Ali Asgar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनों च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
2: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Diwali, roshni ka tyohar, to chalo, shaan ke saath zaike se lagaye, isme char chaand, rivazon ke rang, khanon ka swaad aur Diwali ka ehsaas rakhein barqarar. Apni thali ko banaye khaas shaan ke veg biryani, chana masala, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 Garfield Road, East Riverston, which we tuhadi seva vich.
7: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
8: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
9: Desh bhakti to yaad aa gayi.
10: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
7: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
11: Odi ek border chal rahi hai.
7: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
12: Haan ji, haan ji, yo hai haan ji, haan ji.
13: Haan ji radio.

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
6: दिस ऑटम लाफ आउट लाउड विद आयुष्मान खुराना एंड सादा अली खान इन उड़ता तीर।
7: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा,
8: देशभक्ति तो याद आ गई,
9: देश कौन सा है ये भूल गया।
6: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स।
8: बॉर्डर चल रही है?
6: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमाज नियर यू।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: இந்தியா வித் இமிகிரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவ் இதர் உதர் சித்தி அவுட் ஐ எம் அட்வைசர். அப்படி மா போலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடனும் நாளை வரையான் தோ ஸ்கில் விசா 186 189 190 482 491. ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், பார்ட்னர் விசா, பேரண்ட் விசா, ஜா ஸ்டூடெண்ட் விசா தோ பிஆர் தக் ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லி எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ். ஆஜ் ஹி பரோசே நாள் சம்பர்க் கரோ ஐ எம் அட்வைசர். கால் 02 9063 1618. ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதே நியூ டெல்லி விச் வி ஐ எம் அட்வைசர்.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही भरोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 0290631618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aage.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Yaar tu itte niche thi aake pakka bhi ho gaya. Ki jugaad laya hai?
6: Jugaad nahi. E hai 8 saalan to bhi vadda tajurba. Bansal immigration da. Jinhan ne vadiya course vich admission karai ate फिर मेनू PR दी राह भी विखाई इन्ना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर ता दे बांसल इमिग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
7: G 1674 AM

0: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Zee Studios.

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक। हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: आजी रेडियो।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
2: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद।

0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी
1: मैं तो अपना गैरी संधु सो ड्राइवर का मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय की गल कर लगा जब मैं कनेडा में पहली बार गया। मेरा फ्रेंड मैं कैक्टस क्लब लै गया। उसे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आई डी मंगता सी। मैं

0: दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे आपणियां दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
1: बेटी के लिए जस्टिस चाहिए
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावर एंड मेनी मोर
3: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
0: द एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है आखिरी हिस्सा बाकी है
0: Overseas released by Zee Studios.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: रुसिया होया है वे तू की सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: It's a unisex song.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।
4: ओए असीं लाहौरिये हुन्ने आ, सियाने बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे, चलाक बंदे दी असीं अख पढ़ लैने।

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

बस रेंज रोवर, हाँ जी हाँ जी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हाँ जी AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: रेडियो हाँ जी 1674।

नहीं पापा जी, मैं भी थोड़े नाल जाऊंगी, खेतां च जाऊंगी, काम कराऊंगी, मैं वादा कर दी हां नाल पढ़ाई भी करूंगी। पंजां धीआं ने वाही खेती, वाही खेती समेत घर दा डंगर वछा, ते नाल उन्हां ने पढ़ाई भी की, सारा पिंड इस दी गवाही भरदा है, सारा पिंड गवाही भरदा जी कि धीआं बड़ियां सूझवान सियाणियां ते मेहनती ने। पर दुनियादारी घर का गुजारा फिर भी मसां की चलता। सुरजन सिंह ने पिंड के बाणियों तो कुछ पैसे फड़ रखे सी, जमीन भी वेचनी पई, सिर्फ इस करके कि वह अपनी धीआं नूं चंगी विद्या देनी चाहता सी। समा अपनी चाल चलता रहा, परमात्मा का ओट आसरा इस घर ते भी बनया रहा। सारिया धीआं ने बहुत मेहनत की, उन्हां दी मेहनत सदका वो सारिया सरकारी नौकरी ते लग गईयां, एक एक करके अपनी रोटी कमाउण जोगियां होईयां। इस वजह करके उन्हूं जवाई भी वधिया लभ गए, सारिया धीआं नूं बड़े सोहणे वर मिले, बड़े सोहणे इज्जत वाले परिवारां दे विच व्याहियां गईयां। हुण हर साल जदों सारिया धीआं कट्ठियां होंदियां अपने पेके घर आउंदियां, दादी मेहर कौर ते मां नसीब कौर दे भोग दे उत्ते पिंड दे गरीबां नूं दान पुन करदियां, ते उही सारे पिंड वाले हुण उन्हां दियां सिफतां करदे ने। हुण ते सारा पिंड भी इन्हां पंजां धीआं दे उत्ते पंजां पत्थरां दे उत्ते माण करदा, ते उन्हां दा प्यो सुरजन सिंह थां थां ते रब दे शुकराने करदा नहीं थकदा। एक कहानी लिखी सी सरताज सिंह संदूरा ने, पिंड रणी के अमृतसर तों सानूं ये कहानी भेजदे ने, धन्नवाद।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चवत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: इनकै जीव सावै ताकी महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन न लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर रंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाहीं जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी जिंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज्ड हैं या नहीं भी डिजीज्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी, उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, तीन तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ, ये बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, वो एक बार हमें फिर बता दें।
1: सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें, और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है, कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि वचित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करे तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
0: वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है?
1: करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स का गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: अब अगर इस तरह से गुणों पर कॉन्सेंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा?
2: नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज है, ये ऑलरेडी है, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज है, वो 7 क्वालिटीज का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज द ओशन ऑफ पीस। तो इफ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो इजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें, उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहां से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मींस अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चले जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माय टाइम इज 15 मिनट्स में कर पाती हूँ, तो 15 मिनट्स आई डू माय मेडिटेशन, व्हेन देन एज अ फॉलो अप टू दैट आई कंटिन्यू विद दिस, नॉट
0: आई शो में व्हेन आई कम बैक,
2: यस
0: व्हेन आई कम बैक फिल्ड, यस
2: देन आई डू दिस। तो सपोज अगर मैं रोज 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करूं और वो गुण पर चिंतन करूं, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरूं, उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स, 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट आफ्टर एवरी वन आवर करते हैं, उस हर एक मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेजर बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हाथ पर पड़ रहा है। इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, यस इट विल वर्क डेफिनेटली। 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है, इट विल डेफिनेटली
0: आई थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात शिवानी बहन ने क्लियर की है। कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए, बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा। क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है। और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे। फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफी हो, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
0: अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए,
1: पहले 15 मिनट तो मेडिटेशन, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन।
2: बेसिकली 15 मिनट में आपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना। अस्सी जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है, लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले। आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स। गोली खाने में कितना टाइम लग रहा, आधा मिनट भी नहीं। तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे, then it will hardly take any time to do its work.
0: डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुअलाइज कैसे करें, क्या करें। क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो यू नो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है। आई जस्ट कांट इमेजिन, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं।
1: आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा। वह है डायबिटीज। कि डायबिटीज आज बहुत बढ़ रहा है, हमने इस पर रिसर्च भी की, छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें। कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहां पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे। शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं। शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया,
0: बिना दवाई।
1: नॉर्मल दवाइयां वो ले रहे थे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर। अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई। और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था, को पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई।
0: अच्छा, इंसुलिन लेवल की,
1: हाँ, ब्लड इंसुलिन। आम व्यक्ति यह सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ, परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपने बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। उनको जो विजुअलाइजेशन कराते हैं, मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है जो विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है।
0: अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है,
1: ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज हुआ। तो सबसे पहला तो यह स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है। उनमें पेनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। दवाइयां भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती है, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज्यादा शुगर है, जरूरत से ज्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है। शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है, तो ब्लड वेसल से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं।
0: तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते?
1: क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है
0: क्योंकि इंसुलिन नहीं है।
1: हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है।
0: अच्छा, इंसुलिन
1: है तो वो काम नहीं कर रहा है।
0: इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है।
1: हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है।
0: ओहो, अच्छा।
1: तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
0: किडनी पर
1: सुन होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये
0: चारों कैसे करें?
1: हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जैसे शिवानी बेन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वो पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और ने पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है।
0: आई कुड विजुलाइज एक्चुअली,
1: ना उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया,
0: रिलैक्स हो गई वो।
1: हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करती है और पेनक्रियास को स्टिम्युलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, कि उसमें जूस है, पेनक्रियास का जूस है। उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकती है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है तो क्या होगा?
0: मन करेगा खाने का।
1: हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो
0: हम खा लेंगे।
1: उससे पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा।
0: अच्छा, मुंह में पानी
1: देखो वो सोच के वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया, तो ये भी एक ग्रंथी है।
0: अच्छा।
1: सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथी से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस करके
0: तभी। हाँ, तभी एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना।
1: हाँ,
0: पॉसिबल।
1: और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले, जैसे ही खाने की डिश आ गई आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहां टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है डिनर लेना है, पहले 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ, देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपन्स।
0: अच्छा, उतना ही रिलीज होगा। ओ, तो हम थायराइड को भी तो कर सकते,
1: हर हर और
0: उतना
1: कर
0: ही जितना चाहिए।
1: नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहां एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए। अच्छा। भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया।
0: इट इज एक्चुअली वर्किंग।
1: मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है।
0: और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल
1: है ही। हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है। तो ये सेकेंड लेवल हुआ। फिर अभी थर्ड है कि ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी।
0: अब क्योंकि खाना खा लिया उसके बाद का विजुअलाइजेशन,
1: कि आपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है। तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए। जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए, तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई। उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूं। ये सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, ये सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है। अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए।
0: ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया।
1: हाँ,
0: वो व्हाइट व्हाइट
1: स्क्वायर से वो
0: कर पा रहे। और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता है।
1: बना के बताते हैं प्रैक्टिकल, जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है। वह दूसरा एक कहते हैं कि आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो, 250 लिखा है सारे बॉडी में, 250 लिखा हुआ है, ब्लड में उतने सारे स्क्वायर्स है। अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ। हाँ, अभी 150 हो गई। तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए। तो रियल ये क्रिएट करो, बस 150 लिखा है और सचमुच हो गया
0: वो ब्लड
1: में। आत्मा में वह शक्ति है कि वह प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है।
0: डज इट रिक्वायर क्वाइट लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन?
1: रादर देन कॉन्सेंट्रेशन, नो, यू नीड मोर ऑफ मेडिटेशन। है ना, रिलैक्सेशन की जरूरत है। जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ही इफेक्ट अच्छी होगी।
2: आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अभी तक हम डायबिटीज सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन, मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है। अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं। इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट। नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी, सो इफ आई गेट डिटैच्ड। लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं।
0: वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली यू नो कुछ अच्छा दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती।
2: एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड। हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते। हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए। अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माय माइंड विल डू इट। सी, इफ माय माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माय माइंड कैन हील द थिंग। अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना। इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वाज नॉट अवेयर, अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट। इट विल डेफिनेटली वर्क। लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते। नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी, then the power of the thought will not work. Power of the mind to work, फिर वो thought powerful, positive and concentrated होगा, उसमें कोई
0: conflict नहीं होगा,
2: dilution भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक thought है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा thought है ऑफिस में तो आज ये काम किया नहीं, then तो क्या एक thought से मैं positive emotion create कर रही हूँ, दूसरे thought से मैं stress create कर रही हूँ, तो I'll be opening and closing the door actually. Actually, so it won't work properly. It has to be very focused, channelized thoughts. इसलिए meditation का जो अभ्यास regular रीति से करेंगे, फिर उनके लिए ये करना, it's just an extension of what you are already doing. So become very simple then.
0: Actually,
1: और एक aspect आपको बताता हूँ जो diabetes में है कि भी अधिकतर जो type 2 diabetes है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है, type 2 diabetes में insulin तो होता है, अधिक भी होता है, जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज्यादा होता है, परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंक लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे।
0: अच्छा जैसे, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी
1: काम नहीं कर रहा। तो अगर नहीं, अगर ताले को जंक लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंक खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंक लगा है, वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है, टेंशन ग्रीड सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूं कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहां पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है, सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा क्लीन हो गया, ऑरा एकदम क्लियर हो गया, अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई।
0: तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही
1: कम। हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है।
0: इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशन देखें सचिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, हर ऑर्गन पे काम,
2: पेन मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो पाएगा।
0: पेन के लिए कैसे कर सकते हैं?
1: पेन मैनेजमेंट के लिए पेन में दो बातें हैं, एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुअलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है, उसको मैंने रिलीज कर दिया।
0: हाँ,
1: या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया।
2: आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। आई हैव पर्सनली सीन द डेंटिस्ट सेज आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, वी वर क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा के ये दोनों जो फैकल्टीज है, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करती है कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट एंटैंगल्ड इन द पेन, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इट बिकम्स अ विशियस साइकिल ऑफ पेन, जस्ट चेंज द पैटर्न ऑफ थॉट, क्रिएट दिस विजुअलाइजेशन, इट वर्क्स।
1: और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा रहे हैं ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सिस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सिस भी शांत हुए, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। दिस ऑल्सो कैन वर्क। आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे। आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है, और करीब 25 ईयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का अभी जरूरत क्या, एक तो बताता हूं पहले, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी करिए, उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल्स जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे। अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है।
0: अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी?
1: मेंटेन रहेगी, वो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा, दूसरा ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, एक केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है। पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहां पर जाकर के चिपक जाता है। वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह से हाफ मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया।
2: इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी एक्चुअली, वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। इसी अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन, घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी, तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे हर जगह, जहाँ फायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए।
0: जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोले और कहें और सोचे,
2: सोचकर सोचे, पहले ध्यान से सोचे।
0: वेरी ट्रू शिवानी डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, पता भी है तो सारी चीजें डॉक्टर के हाथ में है। आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। व्हाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन से वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुअलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीजेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स जरूर आते हैं, आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेटनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पड़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम हूं, बाइबल की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साईं बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह, पाप दोष, कष्ट, लोभ, अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो वजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हाँ जी 1674 आस करते हैं वधिया तुहाडा दिन जा रहा होएगा। समा हो चुका अज की कहानी का। सवेरे सवेरे के समय कुलवंत सिंह होरी बाहरों गोल्फ खेड के वापस जो घर आए आके सीधे अपने कमरे के चले गए। कमरे के नौ दियां गल्लां हुण कन्नी पै रही ने, उची उची बोलना शुरू हो गई। आ पैरां दे निशान किन्ने लाए ने, आ गंद फेर किन्ने पा दिता, सफाई कीती नज़र नहीं आउंदी किसे नूं इस घर दे विच। हुण सारा दिन झाड़ू पोचा लैके घूमदे रहीए, होर कम नहीं भला करने होंदे। इह तां स्पष्ट है कि उह अपने सहुरे नूं सुना रही। कुलवंत सिंह रोई DSP रिटायर हुए ने, यह चीज़ बर्दाश्त करनी बड़ी औखी। जिहड़े बंदे दा सारी उम्र रोब रहा होवे, दूसरिया ने इज्जत की होवे, अपने घर दे विच किद्दां भरिया पीता रह सकदा। मंजे तो उठ के बाहर आने लगते ने ते घरवाली बाहों फड़ के रोक लैंदी है। अपना बोलना नहीं पाता जी, जबान दी इदा दिल दी चंगी है। सारा रोटी पानी भी तो करती है ना वो। जिहड़े बंदे ने साफ सफाई की होंदी है ना, उन्होंने थोड़ा जहा महसूस होंदा। तुसीं थोड़ा जहा ध्यान रख्या करो, हमेशा दी तरह घर वाली पुल बन के फिर इस लड़ाई नूं टालना चाहती। ते अज एक बारी फिर तो कुलवंत सिंह होरी भरे पीते उठ के बाथरूम च चले गए ने, मूँह हाथ धोता तो घरवाली मूड बदलने के लिए कहती है मैं कॉफी बना दिती है, अंदर ले आवां जां बाहर पीओगे। अगों जवाब नहीं आया तो आपे कह लगी चलो अज बाहर बगीचे दे विच बह के चाह पीने, बड़े दिन हो गए बगीचे च भी नहीं बैठे।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: हाँ जी, मैं मोहित का और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो। हाँ जी।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ

रेडियो हाँ जी 1674 आस करते हैं दिन थोड़ा वधिया जा रहा होगा। चढ़दी कला च हो गए उस रब का शुक्र कर रहे हो गए चेहरे ते हो गए खुशी।

बस वही ग्रोवर। हाँ जी हाँ जी 1674 ये नहीं है कत्तर बत्तर, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो सुनते रहो। हाँ जी AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।